है उसके मुताबिक वो कर सकता है। अगर वो खाना नहीं खिला सकता या खाना नहीं खिलाना चाहता तो कपड़ा पहना दे 10 मिसकीनों को, और कपड़ा मतलब टोपी नहीं है कि टोपी और रुमाल देके जान छुड़ा ले, नहीं, इसे जान ही छूटेगी आपकी। कपड़े का मतलब वो कपड़ा है जिससे सतर ढांपी जाए और जिसे कपड़ा कहा जाए। उसमें या तो थोब है, बेशक आप 20 रियाल का ले लें, 10 रियाल का ले लें, कोई हर्ज नहीं, लेकिन थोब कपड़ा होना चाहिए, उसके साथ ये पजामा भी होना चाहिए ताकि पूरा हो जाए जिसे सितर ढांपी जाए। अगर आप, क्योंकि इत्आम से खाना खिलाने से ज्यादा महंगा है कपड़ा जो है, अगर आप ये नहीं कर सकते तो गर्दन आजाद करना आज मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स मिस्कीन और फकीर है, लेकिन शरीयत ने सबके लिए आसान रास्ता निकाला है, यह तो था अमीरों के लिए। अगर किसी फकीर ने कसम खा ली है, वो कफारा अदा करना चाहता है, उसका पैसा भी नहीं, तो क्या करेगा वो 3 दिन रोजे रखेगा। क्या अमीर भी 3 दिन रोजे रख सकता है? वो नहीं रख सकता। जिसके पास माल है, 70 रियाल है उसके पास, और उसके 1 दिन के खर्चे से ज्यादा है, तो उस पर वाजिब है कि वो खाना खिला दे मिस्कीनों। अगर उसके पास ये नहीं है तो उसका शुमार फुकरा में होता है, वो 3 दिन का रोजा रख ले, कोई हर्ज नहीं। तो जैसे मैंने बयान किया है, तरतीब इन 3 चीजों में नहीं है, 3 चीजों में इख्तियार है। पहले 3 चीजों में खाना खिलाना, कपड़े पहनाना या गर्दन आजाद करना, इसमें इख्तियार है आपका। और तरतीब जो है, अगर ये ना कर सके फिर रोजे रखने हैं। जो लोग शुरू से ही रोजे 3 दिन रोजे रखते हैं, उनका कफारा अदा नहीं हुआ। और आखिर में बाज ताजिर जो हैं, वो झूठी कसम खाकर अपनी तिजारत करते हैं। याद रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,

मुश्किल से 2-3 घंटे सोते हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बाजार में भी जाना है, चीजें लेके आना, ये करना है, वो करना है, क्या करें, मजबूरी है, ये मजबूरी है। अपने रब के लिए 5 वक्त नमाज माजबाद मस्जिद नहीं पढ़ सकते, मजबूरी है। आधा घंटा, 10 मिनट 20 मिनट रोजाना कुरान नहीं पढ़ सकते, मजबूरी है। किसी आलिम के पास जाके मसाजिद में भरे हुए मसाजिद, ये दुनिया का वो हिस्सा है, याद रखें, अल्लाह ताला ने हमें अपने मुल्क से ऐसे चुना है और खास तौर पर इस मुल्क में बुलाया है। कितने लोग हैं जिसको आप जानते हैं, जिन लोगों को जो तरसते हैं एक दफा अल्लाह के घर देखने को, तरसते हैं और इसी पे उनकी मौत हो जाती है, वो तरसते ही तरसते मर जाते हैं, कितने लोग हैं। और एक हम हैं जब दिल चाहते हैं जाके उमरा कराते हैं, हज कराते हैं, इससे बड़ा कोई एहसान है क्या? आप क्या समझते हैं? यहां पे हम अपनी सीना तांग अपनी मर्जी से यहां पे आए हुए हैं, लगभग हमसे कितने अच्छे लोग हैं जो तमन्ना करते हैं यहां पे आने के लिए, आ नहीं सकते। हमने सिर्फ कोशिश की है, आसानी अल्लाह ताला ने की है, बुलाया भी अल्लाह ताला ने है, क्या जवाब देंगे? अगर यहां से इल्म हासिल करके नहीं जाएंगे, इस मुल्क से तौहीद का इल्म हासिल नहीं करेंगे, दीन क्या है नहीं सीखेंगे, अपने मुल्क में सीख सकते हैं क्या हम लोग? अल्लाह ताला ने ये चांस दिया है, मेरे बंदे यहां से दौलत भी कमाओ, माल भी कमाओ, जमीनें खरीदो, वहां पे जो प्रॉपर्टी खरीदो, कुछ भी करो, लेकिन याद रखें ये ना हो कि इस मुल्क से बाहर जाए जैसे आए थे वैसे गए, माल तो खूब कमाया लेकिन जो अकीदा पहले था वही अकीदे लेके गए, जो बातिल अकीदा और खुराफात और शिरकियात थे वही वापस लेके गए। याद रखिए बहुत सख्त सवाल होने वाला है। आज वक्त है, इल्म हासिल कर सकते हो, सेहत है, तंदुरुस्ती, सब कुछ अल्लाह ताला आपको अता किया है। भाई का सवाल यह है कि क्या मुसलमान के लिए काफी है कि वो कलमा जुबान से पढ़ ले बस? यानी कोई शख्स कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस काफी उसके लिए, उसके निजात के लिए काफी है? आए देखें कुरान मजीद में, सही हदीस में इस मसले को बिल्कुल साफ और वाज़ेह बयान किया अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला का हक है कि हम पे, हमारे ऊपर क्या हक है जानते हैं? अल्लाह ताला का हक है कि हम अल्लाह ताला की इबादत करें, किसी को शरीक ना ठहराएं। सही बुखारी मुस्लिम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया हजरत मुआद से कि ए मुआद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह ताला का हक क्या है हमारे ऊपर? वो फरमाते अल्लाह रसूल अलम, मैं नहीं जानता हूं, अल्लाह जानला का रसूल जाने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ताला का हक यह है बंदों पर, अय्यबुदू वला युशरिकू बिही शैय, अल्लाह ताला की इबादत करें, उसके साथ किसी और को शरीक ना ठहराए, ये अल्लाह ताला का हक है। जो इंसान कलमा पढ़ता है, अब जानते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह अबू जहल भी कहता था, जानते हैं अबू जहल अबू लहब भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहता था, वो ये जानता था कि अल्लाह ताला खालिक है, मालिक है, अल्लाह ताला मुश्किल कुशा हाजत रवा है, अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है, तदबीर सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला करता है, जिंदगी मौत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला है, वो जानता है। इरशाद बारी ताला कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है वला इंसअलतु मन खलक़ अस्समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्नल्लाह, जब उसे पूछा जाए, उनसे सवाल करे कोई कि किसने जमीन आसमान को पैदा किया, वो कहते हैं अल्लाह ताला ने, सुभान अल्लाह। अबू जहल क्या, हजी अबू जहल कहता है, अब ये भी जानते हैं कि वो हज भी करते थे, नमाज भी पढ़ते थे, रोजा भी रखते थे, जानते हैं। हजरत अबू जर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है कि इस्लाम कबूल करने से 3 साल पहले मैं नमाज पढ़ता था, काफिर जाकर नमाज पढ़ता था अल्लाह ताला के लिए, सदका रोजा रखते थे। सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत में आया है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि आशूरा का दिन, मुहर्रम की 10 तारीख का दिन, जाहिलियत में भी हम रखते थे, यानी इस्लाम से पहले जाहिलियत में मुशरिकीन अरब भी रोजा रखते थे, तो रोजा किसके लिए रखते थे? हुबल के लिए, लात इज्जत के लिए, बुतों के लिए रखते थे, किसके लिए रखते थे? अल्लाह ताला के लिए रखते थे। हज करते थे कि नहीं? तलबिया क्या था? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। आज हम क्या पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं कि नहीं? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, लेकिन आगे वो कुछ लफ्ज बढ़ाते थे, क्या थे? इल्ला शरीकन हुवा लक मलकत हुवा मा मलकत, सिवाय इस अल्लाह ताला